तुषाराद्रि सङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत् बाल बालेन्दु कंठे भुजं चलत् कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश चर्मांबरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रकल्पं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदं भजन्तीह लोके परेव नराणं न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुखौ धरं